0: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: सचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, मैना पोखरी, दोलाखा।